0: करू कोकोनट सोकोनट वीटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो स्वाद कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अड्गुरी।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: कई प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: मध्यपश्चिम टाइम चेक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायनेट अब सब कनेक्टेड।

राम राम सन्जे 5 बजे खारुभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। 3 वर्ष अस्ट्रेलियामा अध्ययनसँग रोजगारी कैकन स्वदेश घुम्लक घोराई उपमहानगरपालिका 9 अस्पराका समीर अधिकारीसे गाउँमज कप तथा प्लेट उत्पादन कैकन सञ्चालन कैकन उदाहरण प्रस्तुत गरिरहल। विदेशको रोजगार छोड्कन करिब 35 लाख रूपियाँ लगानीमा शुरू गर्लक उद्योगमा अघि लगानी बढ़ाकर 70 लाख रूपियाँ पुगा रखल। 2 वर्ष अगाडि स्थापना करगिलक सागर उद्योग सागर कप उद्योगसे अघि मासिक 9 से 10 लाख रूपियाँसम्मका कप तथा प्लेट बिक्री हुन कर्लक अधिकार बटवा रखल। उद्योगसे हुने आमदानी से सबको खर्च कटाकन मासिक करिब 1 लाख रूपियाँ बचत हुन कर्लक उहाँका गाई बाटेन। उद्योगमा चिया कफी तथा जुसक लाग प्रयोग हुन पेपरसँग कप खाजा तथा खैनाक प्रयोग हुन विभिन्न आकारका पेपर प्लेट उत्पादन हुती उहाँ उत्पादन गरिरहल। उद्योगमा उत्पादित कप तथा प्लेट दाङमा घोराई तुलसीपुर नारायणपुर लगायतका बजारसँग रोल्पासम्म पुगिन करलबाट उत्पादन शुरू गर्लक। प्रारम्भिक समयमा बजार खोज्दै अपनी व्यवसायको पसलमा पुग्न अवस्था रहलसे फे अखि माघ बहर्ती गैल घोर्से आही तिउर मजा कर्तिकल उहाँ बटुवा रखल। उहाँको अनुसार अखि व्यवसायी उद्योग मज आकन कप तथा प्लेटको अर्डर गर्न ओ सामग्री लैजिन करलबाट। दाङका राप्ती गाउँपालिकासे किसान हुनकला कृषि सेवा तथा सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गरिन उद्देश्यसे राप्ती कृषि एप सञ्चालनमा आनरखल। एप मार्फत किसानसे मौसमको जानकारी कृषि उपजको बजार मूल्य बाली सम्बन्धी विवरण तथा पशुपालन सम्बन्धी जानकारी मोबाइल मेसेजमा प्राप्त गर सिक्जिने बा। उसँग बालीमा लग्न रोग तथा किराको पहिचान वाक रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपाय कृषि प्रविधि ओ खेती सम्बन्धी आवश्यक जानकारी समेत एप से प्राप्त कर सिक्जिना व्यवस्था करगिल बा। आपन कृषि उपज निर्यात कर चहरा किसान से सम्बन्धित व्यापारी तथा खरीदकर्ताको सूची हेर सिक्जिने बा। गाउँपालिका से प्रकाशन गर्ल कृषि क्षेत्र सम्बन्धी सूचना कार्यक्रम ओ विभिन्न सेवाका लाग आवेदन समेत एप सेजो देश सिक्जिना कृषि अधिकृत प्रदीप खत्री जानकारी दिएर उहाँका अनुसार एपमसे किसानको विवरण डिजिटल रूपमा दर्जिना हुन कोर्से गाउँपालिकासे सञ्चालन हुन कृषि कार्यक्रम अनुदान ओ अन्य सेवा किसानसम्म पुगेकला सहज हुने बा। किसानसे कृषि उत्पादन पशुपालन रोग किरा व्यवस्थापन लगायत विषयमा आवश्यक सूचना एक ठाउँसे प्राप्त गर सिक्जिने बा। एप प्रयोग गरिकन मोबाइलको प्ले स्टोरमा जाकन राप्ती कृषि खोजकन डाउनलोड कर सिक्जिने बा। मोबाइल नम्बर से खाता दर्ता कैकन प्राप्त ओटीपी मार्फत प्रमाणित करल पाछा आवश्यक व्यक्तिगत विवरण तथा केवाईसी फारम भरफे सिक्जिने बा। दाङका तुलसीपुरमा सामुदायिक वन तथा वन संरक्षण युवाको सहभागिता बढ़ी हरित अर्थतन्त्र ओ दिगो व्यवस्थापनमा जोड़ दिएपर्न सरकारवाला हुकनक्षे बटवा रखल। वन दिवस 2/83 को अवसरमा तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रम आपको सामुदायिक वन युवा सहभागिता हरित अर्थतन्त्र ओ दिगो व्यवस्थापनका मूल नाराका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल स्थानीय वन महासंघ तुलसीपुर दाङका आयोजनामा सम्पन्न हुलको। कार्यक्रम स्थानीय वन महासंघ अध्यक्ष खेमलाल महतराको अध्यक्षता तथा प्रदेश वन महासंघ लुम्बिनी का महासचिव शोभाकर साकुटा का बरपौनामा हुलको। वन का डिगो व्यवस्थापन गलाको उपभोक्ता स्थानीय तह वन कार्यक्रम वन कार्यालय तथा सरकारवाला निकाय बीच सह कार्य आवश्यक रलक उहाँका कार्यालयहीन। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका सहसचिव पूर्व बहादुर केसी सह डिभिजन वन कार्यालय सचिव तुलसीपुरका प्रमुख किम बहादुर केसी ग्रीन फाउन्डेशनका उद्यम अधिकृत सुरेश रावत लगायतको सहभागिता रहल रह। सहभागीको नक्से बदलिदो समय अनुसार सामुदायिक वनको व्यवस्थापन लौ पुस्ताहान जोड्ती वनसे वातावरणीय संरक्षणसँग आर्थिक लाभ लिए सक्ना वातावरण बनाइपर्न जोड़ दिएल रह।
भुइठाता आज थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन्जाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटे अखसक खबर मसे समाचार कक्षक सखु संगठनसँग म शालिक राम चौधरी विदा हिटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: वाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन बीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: समस्या
3: पाठेघर में समस्या पाठेघर खस्ने को समस्या
1: पाठेघर में मासु पलाउने
3: निसंतान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठेघर में कैंसर भय नभएको चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग को आधुनिक मेसिन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि सम्पर्क गर्नुहोला
4: बिरामी जाँच्ने मिति यही श्रावण 29 गते शुक्रबार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नम्बर 082-595-410 मोबाइल नम्बर 98-478-28913 र 98095-12871
3: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ

0: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा
1: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नंबर 082-585-210 थप संपर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाड़ी निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ
2: नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरबाट अनुभव प्राप्त वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखरेल अब बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराही दाङमा
3: डाक्टर अभ्यास पोखरेलद्वारा दिइने सेवाहरू मेडिकल आईसीयू लगायत सुगर प्रेसर थाइराइडको चेकजाँच तथा उपचार सेवा
4: छाती मुटु दम क्षयरोग सम्बन्धी बिरामीको चेकजाँच तथा उपचार
3: मृगौला र कलेजो सम्बन्धी दीर्घकालीन रोगहरूको चेकजाँच तथा उपचार
4: डेंगु मलेरिया निमोनिया टाइफाइड साथै विभिन्न रोगहरूको चेकजाँच तथा उपचार सेवा
3: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू
4: वरिष्ठ स्थिति तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
5: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा
3: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेत द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
5: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा
3: वरिष्ठ हात जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा अपरेशन
5: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा
3: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
6: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई जाँच फोन नम्बर 082-585-218

0: आईएमए को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम जान चेक यति बेला बेलुकी को 7 बजे को

0: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।
1: मध्य पश्चिम ज्ञान चेक यति बेला रात्रिको 8 बजेको छ।
2: तार सुन्न थाल्छ थाह संचार नेटवर्कमा। यो हो नेपाल परिवेश समयको आवाज।